0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से

0: गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: આપે ટ્યુન કર્યું છે આકાશવાણીનું અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર। પ્રસ્તુત છે પ્રાતઃકાલીન ભક્તિ સંગીતનો કાર્યક્રમ અર્ચના।

भरत को चतुरंगिणी सेना के साथ चित्रकूट आते देख निषादों की भांति लक्ष्मण के मन में भी आशंका हुई कि राजपद पाकर भरत को प्रभुता का मद हो गया है और श्री राम को वन में अकेला असहाय समझ वे युद्ध करने आ रहे हैं। अतः लक्ष्मण ने भरत से युद्ध करने की ठान ली। श्री राम के चरणों की वंदना कर चरण रज माथे से लगाते हुए बोले, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने वैसे भी हमारा कम अहित नहीं किया है और अब युद्ध करने आ रहे हैं। आखिर हम ये सब कहाँ तक सहन करेंगे, जबकि आप हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। अग्रज से युद्ध की आज्ञा मांगते हुए लक्ष्मण साक्षात वीर रस के अवतार दिख रहे थे। सिर पर जटाजूट और कमर में बंधा बाणों भरा तरकस। भरत का सामना करने को वो पूरी तरह तैयार हैं। उपस्थित समाज के वहां एकत्रित होने के कारण उनका हौसला और भी बढ़ गया है। मन में दृढ़ निश्चय हो गया है कि आज वो अपना सारा पिछला क्रोध अच्छी तरह प्रकट करेंगे। क्रोधित लक्ष्मण को युद्ध के लिए उद्यत देख सारा जगत भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे तात, जो बिना विचारे जल्दी में कुछ करके बाद में पछताते हैं उन्हें बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता।

0: हमारा प्रयास एक फुल स्टैक भारतीय सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करने का है।
1: भारत ना माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना वैश्विक विजन अने माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल ना अविरत प्रयासों ना परिणामे आज सानंद धोलेरा अने अपना डायमंड हब सूरत ने सेमीकंडक्टर क्रांति मा आवरी लईने गुजरात भारत नु सिलिकॉन स्टेट अने सेमीकंडक्टर हब बनी चुक्यु छे। चरखा थी चिप सुधीनी आ यात्रा ने गतिशील बनावतो वधु एक नवो आयाम एटले सानंद मा निर्मित मेगा ओसेट फेसिलिटी। आ प्रोजेक्ट ऑटोमोटिव अने एआई युग ने गति आपवानी साथे हजारों युवानो माटे हाईटेक रोजगारी नी नवी तको सर्जशे। भारत ना सेमीकंडक्टर क्लस्टर तरीके गुजरात ने मजबूत करता आ चौथा प्लांट नू 4 जुलाई 2026 ना रोज माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना वरद हस्ते उद्घाटन थशे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड।
2: કાર્યક્રમના પ્રારંભે આપે સાંભળ્યું લતા મંગેશકર અને મોહમ્મદ રફીના સ્વરમાં આરતી ફિલ્મનું ગીત. હવે સાંભળીએ મમતા ફિલ્મનું ગીત હેમંત કુમાર અને લતા મંગેશકરના સ્વરમાં.

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: આકાશવાણી અમદાવાદ વડોદરા, થોડી જ ક્ષણોમાં બરાબર 6:55 સાંભળશો દિલ્હીથી પ્રસારિત સંસ્કૃતમાં સમાચાર.

0: विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय कृषि सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास

0: लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्ट्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक वित्तीय तकनीकी निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको

0: फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों के ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ते लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ते ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी एप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी

0: द्वारा जनहितमा प्रसारित
1: कार्यक्रममा हवे सांभळीए श्यामल मुंशी सौमिल मुंशीना स्वरमा रमेश पारेखनी रचना.

0: Amore mio, dove sai tu? Hey, क्या गा रही?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

बेनजीर पठान ने आपजो इजाजत। स्वस्थ रहो, मस्त रहो अने खुश रहो। आवजो बहनों। आप सांभळी रह्या हता बहनों माटेनो कार्यक्रम सहयर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। UAPA अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के SIR के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी

आकाशवाणी का ये अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और भुज केंद्र है। अब प्रस्तुत है फौजी दोस्तों के लिए हमारा विशेष कार्यक्रम जय भारती।

जय भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी ईशा रत्नाकर नांगर का सादर नमस्कार। दोस्तों, आज 4 जुलाई यानी स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि। आज का दिन हमें उस महान सन्यासी की याद दिलाता है जिन्होंने अपने विचार, ज्ञान और अद्भुत व्यक्तित्व से भारत की संस्कृति और आध्यात्मिकता का संदेश पूरे विश्व तक पहुंचाया। उनका संदेश उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको आज भी हर युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, जय भारती कार्यक्रम का ये प्रथम गाना सुनते हैं AR रहमान की आवाज में फिल्म लगान से, संगीत श्रीनिवास का और बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

दोस्तों अब सुनिए हरिहरन के स्वर में रोजा फिल्म का ये गीत। इस गीत को संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने, शब्द लिखे हैं PK मिश्रा ने।

दोस्तों, आज 4 जुलाई को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस के अवसर पर हम उस संस्था को नमन करते हैं जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में स्वतंत्र, निष्पक्ष और उत्तरदायी पत्रकारिता को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई थी। प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा और पत्रकारिता के उच्च मानांकों को बनाए रखने का इसका प्रमुख दायित्व है। आइए इस अवसर पर सत्य, निष्पक्षता और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों को अपनाने का संकल्प ले सभी पत्रकारों और मीडिया जगत से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारती कार्यक्रम का यह अगला गाना फिल्म संजू से सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल का युगल स्वर है।

अब हम आपको सुनवाते हैं अगला गाना सोनू निगम की आवाज में बॉर्डर फिल्म से। संगीत दिया है अलका याग्निक ने और बोल जावेद अख्तर के।

दोस्तों, आज हम स्मरण करते हैं पिंगली वेंकैया जी को, जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मूल स्वरूप की रचना करके देश को एक अमूल्य पहचान दी। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, दूरदर्शी विचारक और सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उनका योगदान केवल तिरंगे के निर्माण तक सीमित नहीं, बल्कि भारत की एकता, स्वाभिमान और आज़ादी का भी प्रतीक रहा है। जय भारती कार्यक्रम का अगला गाना आप सुनिए, फिल्म योद्धा से। स्वर दिया है बी प्राक ने, संगीतकार तनिष्क बागची, गीतकार मनोज मुंताशीर।

आज हम भारत के पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी विचारक गुलजारीलाल नंदा जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन करते हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईमानदारी, सादगी, श्रमिक कल्याण और राष्ट्र सेवा को समर्पित किया। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और कर्तव्य निष्ठा का उनका आदर्श आज भी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। अब सुनिए उरी फिल्म का ये गीत, यासिर देसाई और शाश्वत सचदेव के स्वर में। बोल लिखे हैं राजशेखर ने, संगीत शाश्वत सचदेव का।

दोस्तों आज हम भारतीय क्रिकेट के दिग्गज ऑफ स्पिन गेंदबाज और पूर्व कप्तान गुलाम अहमद जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन करके याद करते हैं। उन्होंने अपने शानदार खेल अनुशासन और खेल भावना से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। टेस्ट क्रिकेट में उनकी प्रभावशाली गेंदबाजी और बाद में भारतीय क्रिकेट प्रशासन में भी उनकी सेवाएं सदैव हमें स्मरणीय रहेगी। जय भारती कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए, फिल्म इकबाल से केके और सलीम मर्चेंट का युगल स्वर।

और दोस्तों, ज्ञान, संस्कार और सकारात्मक सोच ही जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं। प्रेरणा के दीप जलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन को बेहतर बनाए और आपका हर नया दिन नई उम्मीद, नया उत्साह और नई प्रेरणा के साथ आए। इसी शुभकामना के साथ आज का जय भारती कार्यक्रम समाप्त करने की आपकी रेडियो सखी ईशा रत्नाकर नांगर को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय जवान।

दोस्तों 2:15 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया।

0: 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलिमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलिमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को रब रब बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार

0: मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
1: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार पांचवें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। ये राज्य में अवसंरचना, ऊर्जा, परिवहन और रोजगार सृजन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का परिचायक है। अपनी एक दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक ऐसा औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है जिसे बिल्कुल नई और पहले से इस्तेमाल न की गई जमीन पर बनाया जाता है। 90,00,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस परिसर की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोज

0: पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक ऐसा औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है जिसे बिल्कुल नई और पहले से इस्तेमाल न की गई जमीन पर बनाया जाता है। 90 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस परिसर की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। संशोधन में केंद्र सरकार को संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल सुधारों के माध्यम से उपभोक्ता न्याय को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा लिखित एक लेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद ई जागृति को परिष्कृत किया गया है। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों का संरक्षण करना है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे टेक्सास के ह्यूस्टन में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 2:30 पर पराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी अमदावाद वडोदरा केन्द्र छे। આજે હવે પછી પ્રસારિત થનારા કાર્યક્રમોની માહિતી અને કેટલીક ખોવાયેલ વ્યક્તિ અંગેની જાહેરાત। પ્રથમ કાર્યક્રમોની રૂપરેખા। શ્રોતા મિત્રો, માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાણંદ ખાતે CG સેમી ઓસેટ સુવિધાનું ઉદઘાટન અને વ્યવસાયિક ઉત્પાદનનો આરંભ કરાવશે। આ કાર્યક્રમને આવરી લેતો રેડિયો અહેવાલ રાત્રે 9:30 મિનિટે પ્રસારિત કરવામાં આવશે। આજે પ્રસારિત થનારા અન્ય કાર્યક્રમોમાં

नमस्ते, ही आकाशवाणी आहे। हाणे त ममता खूबचंदानीअ खां देश ऐं विदेश जा समाचार ॿुधंदा। सभ खां पहिरियों मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ भारत जो पहिरियों ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी ऐं पेट्रोकेमिकल्स आंगण मुल्क खे सपोर्ट कयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ ग्राहकनि जे इंसाफ खे मज़बूत करण लाइ सरकार जी कोशिशुनि जो ज़िक्र कयो। भारत ऐं इज़राइल जे विच में बाहमी सीड़प समझौतो अॼु खां लागू। ॾखण ओलह चौमासो ईंदड़ चइनि ॾींहनि में गुजरात, हरियाणा, पंजाब ऐं राजस्थान जे कुझु हिसनि में अॻिते वधंदो ऐं भारत ऐं इंग्लैंड जे विच में ॿियों T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच अॼु मैनचेस्टर में खेॾियो वेंदो। हाणे समाचार तफ़सीलवार ॿुधंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ अॼु राजस्थान जे बालोतरा में अटकल 1,05,000 करोड़ रुपियनि जे विकास योजनाउनि जो इफ़्तिताह ऐं संगे बुनियादु रखियो।

0: ये योजनाओं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी आमदरफ्त, रेलवे रोड रस्ता, वर निर्माण शक्ति ए बिजली समेत केतरन ही खितन में आहिन। प्रधानमंत्री बालोतरा जे पंचपदरा में भारत जी पहरी ग्रीन फ्लड इंटीग्रेटेड डिजाइनरी रिफाइनरी ए पेट्रोकेमिकल्स अंगण राष्ट्र के सपोर्ट कयो। 90 लख मैट्रिक टन हर साल सगवारे इन अंगण जी स्थापना 79,450 करोड़ रुपये का वधिक जी सीड़प से कई पई वे। प्रधानमंत्री चयो या रिफाइनरी लखे मानुन वास्ते रोजगार जो जरियो बणजंदी। अचो त बुधऊं।
1: रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी 13,000 करोड़ रुपये का वधिक जी कुल लागत वारी जयपुर मेट्रो रेल योजना के बे तबके जो भी संगे बुनियाद रखियो। इन खां अग प्रधानमंत्री अज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन जो इफ्तिताह कयो। 480 करोड़ रुपयन की लागत से तैयार इो नओ टर्मिनल भवन हर साल 20 लख यात्रियों की अचवन लाए डिजाइन कयो वयो आहे। श्री मोदी तरमीम हवाई उड़ान योजना जो भी शुभ मुहूर्त कयो। अचो त बुधो।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है। शेखावटी क्षेत्र के जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल सुधारन के जरिए से ग्राहकन के इंसाफ के बा इख्तियार बनाने लाए ई जागृति प्लेटफॉर्म की तारीफ कई। मरकजी मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक यह शुरुआत ग्राहकन की फरियादन के मुकम्मल सरगर्मी जो डिजिटलाइजेशन करे न्याय सृष्टि के जदीद तेज ए शफाफ तोड़े सहजो बणाइंदो आहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज गुजरात के साणंद में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के हिमथाईंदे सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली ए जांच मर्कज जो इफ्तिताह कयो। 7,500 करोड़ रुपये का वधिक जी सीड़प से इहो मर्कज मुल्क जी तकनीकी वर निर्माण यात्रा में अहम कदम आहे। ही समाचार तवी आकाशवाणी तां बुधी रहा आयो। वधिक समाचारन जी तफसील जे लाए तवां असांजी वेबसाइट newsonair.gov.in के फॉलो करे सगो था। एही समाचार तवां असांजी यूट्यूब चैनल एयर न्यूज़ गुजरात ते भी बुधी सगो था। भारत ए इज़राइल विच में बहामी सीड़प समझौतो BIA अज का लागू थियो आहे। इन समझौते ते गुजरल साल सेप्टेंबर में नई दिल्ली में दस्तखत कया वया हुआ। माली वजरात बुधायो त बहामी आर्थिक लागापन के मजबूत करण महफूज तोड़े सीड़प के इम्कानी वातावरण की खातरी करण के दिस में अहम कदम आहे। वजरात बुधायो त BIA सा शरहद पार सीड़प सरगर्मियों में इजाफे थियण ए भारत ए इज़राइल के विच में आर्थिक बांगेबाई वारी वधिक मजबूत होने की उम्मीद आहे। आबहवा महकमे ईंदड़ 4 ॾींहन में दखण ओलह मानसून जे गुजरात हरियाणा पंजाब ए राजस्थान जे कुछ हिस्सन में अग्या वधण जा इम्कान जाहिर कया आहिन। मध्य प्रदेश साहिली कर्नाटक ओभरी राजस्थान तेलंगाना ए विदर्भ में सुभाणे तेज बरसात जा इम्कान आहिन। महाराष्ट्र मां असांजे खातो बुधायो त केतरनि ई इलाइक़नि में तेज बरसात सबबि अवामी जीवन मुतासर।

0: हाज़िर थियो आहे हिक रिपोर्टर।
1: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार पांचवें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरू के राष्ट्रपति चूंडन में जीत हासिल कराते केकी फिकी मोरिया के खीरू दिन। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी भारत पेरू से गड पैंजी गहरी दोस्ती के ढी अहमियत डी है। मुख्तलिफ खितन में बिन्हीं मुल्क के विच में बेफखी बांगे भाईवारी के मजबूत करण लाइ कॉलबद है। गुजरात में हलंदड़ मुख्तलिफ रेल योजनाओं के जायजे का अहमदाबाद में प्रेस रिपोर्टर के मरकजी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव विश्वास दियारो तो अहमदाबाद ए मुंबई के जोड़ने वो समूरो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के आखिर तई तैयार किया वो। उन बुधा तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन योजना जो निर्माण तेजी से अगया वधी रो आ। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अज वॉटरन की फेर सतह की खास गहरी नजरसानी SIR सरगर्मी के तहत जमा करायल हिसाब किताब फॉर्म लाए सोशल मीडिया पोस्ट में चयो त सबनी लायक वॉटरन के इन सरगर्मी में बहरो वठण घुर्जे। वसीह पायरसी खबरों के दिसंदे सरकार मैसेंजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के नोटिस जारी कयो आहे। सरकार टेलीग्राम के पायोरेटेड फिल्मों ए OTT कंटेंट के खिलाफ तुरंत कार्यवाही करण जो आदेश दिनों आहे। सरकारी जरियन मौजूद प्लेटफॉर्म के 15 दिन के अंदर कार्यवाही की रिपोर्ट जमा कराने लाए चयो वयो आहे। इन कदम जो मकसद भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म जगत, नशरियात, OTT प्लेटफॉर्म, प्रोड्यूसर ए बन हिफाजत करण जो आहे। रांदुन पासे रुख कंदे क्रिकेट में भारत ए इंग्लैंड के विच में 5 मैचों की T20 सीरीज जो बो मुकाबलो अज मैनचेस्टर में खेलो वेंदो। अचो तो बुदों।
2: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा
0: मुख्य समाचार एक भेरों बेहर बुधंदास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत जो पहरियों ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी ए पेट्रोकेमिकल्स अंगण मुल्क के सपोर्ट कयो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राहकन के इंसाफ के मजबूत करण के लिए सरकार की कोशिशों जो जिक्र कयो। भारत ए इजराइल के विच में बहामी सीड़प समझौतो अज का लागू। सिंधी समाचारन जो इयो अंक ते समाप्त थियो। मुखे दींदा इजाजत। नमस्ते।
3: आकाशवाणी नु आ अहमदाबाद वडोदरा केंद्र छे।
4: જીવનની વાત સાંભળીને માછીમારી કરતા એને દરિયામાં બેનામી નશીલા પદાર્થોની જાણ તુરત જ મરીન પોલીસને કરી દીધી।
5: ગાંજો, અફીણ, કોકેન, MDMA જેવા નશીલા પદાર્થોની હેરાફેરી કરવાના ગુનાઓમાં NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનેગાર વ્યક્તિ સામે કડક કાર્યવાહી અને ધરપકડ થઈ શકે છે અને આપણને કોઈને પણ દરિયામાં કોઈ શંકાસ્પદ બોટ, વિદેશી કે અજાણી વ્યક્તિ કે બેનામી ડ્રગ્સ નજરે ચડે તો જીવનની જેમ તરત જ ગુજરાત મરીન પોલીસને 1093 પર જાણ કરવી। આપની સજાગતા અને તકેદારી આપે દરિયાઈ સુરક્ષાની ખાતરી। ગુજરાત મરીન પોલીસ દ્વારા જનહિતમાં પ્રસારિત।
3: અને શ્રોતા મિત્રો, હવે આજના હવામાન સમાચાર। અમદાવાદનું આજનું મહત્તમ ઉષ્ણતામાન 32.2 ઓંશ સેલ્સિયસ નોંધાયું, જે સામાન્ય કરતા 3.8 ઓંશ સેલ્સિયસ જેટલું ઓછું હતું। લઘુત્તમ ઉષ્ણતામાન 27.8 ઓંશ સેલ્સિયસ સામાન્ય કરતા 1 ઓંશ સેલ્સિયસ જેટલું વધારે નોંધાયું છે। સાંજે 5:30 વાગે વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ 92% નોંધાયું છે। સવારે 8:30 વાગ્યાથી સાંજે 5:30

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20

0: 30 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सांसद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
3: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
2: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रूपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
4: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है।

0: और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
1: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खमेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खमेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश

0: राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पैराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन

0: मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है.
1: Lauding the diverse workforce at the plant, the Prime Minister described the complex as a mini India, where engineers and professionals from various states are working under one roof to power the global digital economy. The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20

बूट, ए प्राइज दैट हैज सरप्राइजिंगली रिमेन मिसिंग फ्रॉम हिज इनक्रेडिबल वर्ल्ड कप लीगेसी. रोनाल्डोज जर्नी हैज बीन डिफरेंट बट इक्वली रिमार्केबल. हिज करियर हैज बीन बिल्ट ऑन डिसिप्लिन, एम्बिशन एंड अनमैच हंगर टू इम्प्रूव. बट रोनाल्डो फ्रॉम यंग टैलेंट टू वन ऑफ फुटबॉल्स ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर्स, रोनाल्डो हैज चेंज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनलिज्म, डेडिकेशन, द एथलेटिसिज्म, कंसिस्टेंसी एंड डिजायर टू कीप कम्पीटिंग हैव इंस्पायर्ड एन एंटायर जनरेशन ऑफ प्लेयर्स. नाउ प्रोबेबली इन हिज लास्ट वर्ल्ड कप, कैन रोनाल्डो विन द कोवेटेड ट्रॉफी दिस टाइम टू कम्प्लीट हिज ट्रॉफी कैबिनेट? ओनली टाइम विल आंसर. बट 2026 कैरीज ए स्पेशल फीलिंग. द जनरेशन ग्रू अप वॉचिंग मेसी, रोनाल्डो इज नाउ सीइंग देयर फाइनल बैटल्स ऑफ बिगेस्ट स्टेज. सून न्यू नेम्स विल डोमिनेट फुटबॉल, न्यू हीरोज विल राइज, बट मेसी रोनाल्डो एरा विल रिमेन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरीज एवर रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ ब्यूटीफुल गेम. द ग्रुप स्टेज क्रिएट्स स्टोरीज, बट नॉकआउट फुटबॉल क्रिएट्स लीजेंड्स. द राउंड ऑफ 32 इज वेयर द टूर्नामेंट चैलेंजेस एंड चेंजेस कंप्लीटली. देर इज नो रूम फॉर रिकवरी, नो सेकंड चांस. वन मिस्टेक कैन सेंड अ टीम होम. द नॉकआउट स्टेज हैज ऑलवेज बीन द प्लेस वेयर फुटबॉल प्रोड्यूसेस इट्स बिगेस्ट सरप्राइजेस, एंड 2026 वर्ल्ड कप हैज कंटिन्यूड दैट ट्रेडिशन. मोरक्को वंस अगेन शोड द वर्ल्ड दैट दे आर नो लॉन्गर जस्ट एन अंडरडॉग स्टोरी, एंड देयर हिस्टोरिक रन इन 2022, दे एंटर दिस टूर्नामेंट विद कॉन्फिडेंस एंड बिलीव्स. इन द राउंड ऑफ 32, दे प्रोड्यूस्ड अनदर मेमोरेबल परफॉर्मेंस बाय डिफीटिंग द नेदरलैंड्स इन ड्रामेटिक पेनल्टी शूट आउट, अ मैच दैट शोड डिसिप्लिन, पेशेंस एंड मेंटल स्ट्रेंथ अंडर प्रेशर. पैराग्वे ऑल्सो क्रिएटेड मेजर अपसेट बाय डिफीटिंग जर्मनी इन राउंड ऑफ 32. अगेंस्ट वन ऑफ द फुटबॉल्स मोस्ट रेप्यूटेड नेशंस, पैराग्वे स्टेड ऑर्गेनाइज, डिफेंडेड विद करेज एंड टुक देयर चांसेस वेन इट मैटर्ड. देयर विक्ट्री रिमेंड एंड रिमाइंडेड एवरी वन दैट इन नॉकआउट फुटबॉल हिस्ट्री एंड रेप्यूटेशन कैनॉट गारंटी सक्सेस, बिकॉज इन दिस स्टेज एवरी स्मॉल मोमेंट बिकम्स ह्यूज. ए मिस्ड पेनल्टी, ए गोल कीपर सेव, ए लास्ट मिनट गोल, दीज आर द मोमेंट्स दैट डिसाइड हिस्ट्री. दिस इज वाई वर्ल्ड कप प्रोड्यूसेज अनफर्गेटेबल इमोशंस एंड मोमेंट्स. ए स्मॉल नेशन डिफीटिंग ए जायंट इज नॉट जस्ट अ रिजल्ट, इट बिकम्स नेशनल मेमोरी. फॉर प्लेयर्स दीज मैचेस आर मोमेंट्स दे ड्रीम अबाउट फ्रॉम चाइल्डहुड, बिकॉज इन नॉकआउट फुटबॉल देर इज नो टुमारो, देर इज ओनली वन चांस टू क्रिएट हिस्ट्री. फुटबॉल हैज ऑलवेज बीन अबाउट ह्यूमन इमोशंस, बट टेक्नोलॉजी हैज नाउ बिकम इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्पोर्ट. VAR, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्लेयर ट्रैकिंग सिस्टम्स हैव चेंज्ड द वे डिसीजंस आर मेड. अर्लियर वन रेफरीज मिस्टेक कुड डिसाइड द फेट ऑफ टूर्नामेंट, टूडे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स सपोर्ट, बट इट हैज ऑल्सो क्रिएटेड न्यू मोमेंट्स ऑफ डिबेट. Because sometimes biggest drama comes when technology changes the story in matters of seconds. In 2026 World Cup, we saw how a goal celebration could suddenly turn into disappointment. During the Belgium versus Iran match, Iran thought they had taken the lead when Mehdi Taremi found the net from a cleverly designed free kick routine. But after a VAR review, the goal was ruled out for offside. A moment of joy disappeared instantly, showing how technology can change the emotion of thousands of fans within seconds. Another major VAR moment came in the knockout stage when Germany faced Paraguay. Germany appeared to have scored a crucial extra time goal through Jonathan Tah, but after a review, the goal was cancelled because of infringement involving the goalkeeper. The decision became one of the talking points of the match and showed how fine margins are at the highest levels. These moments raise an important question. How technology is too much? Because football is not only about correct decisions. It is all about emotions, celebrations, the heartbreaks, the arguments, and the unforgettable moments. Technology can help referees, but it can never replace the human drama that makes football world's most loved sport. Football continues to find a balance between tradition and innovation. The 2026 World Cup is unique because it is being hosted across three nations, USA, Canada and Mexico. The scale is enormous. For the first time, tournament is spread across such a vast geographical area, bringing football to different cities, cultures and environment. From football atmosphere of Mexico to the modern stadiums of United States and growing football culture of Canada, this World Cup represents a truly continental celebration of the sport. But with the scale comes a new challenge.
teams are not only fighting

0: कमिटमेंट, निशान चुक माफ, नथी माफ, नीचू निशान. वी सर्टनली डोंट वांट टू सेट आवर साइट्स लो सर. अष्टमिलियंस आर लर्निंग गुजराती बाय द डे. टुडे वी सेलिब्रेट नॉट जस्ट द फर्स्ट कमर्शियल शिपमेंट फ्रॉम द फैसिलिटी बट इंडियाज इमर्जिंग रोल इन द ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन. It is deeply symbolic that our first shipment is going to global customers of Renesas, our Japanese partner. After all, Japan has long been synonymous with precision, discipline, and quality. As people in Gujarat often say, "Kaam bole che." Today, this first shipment speaks louder than words. Getting to this stage took the blood, sweat, and tears of a fantastic team of people. Over 75 of our colleagues moved to Gujarat from the Philippines, Korea, United States, and Malaysia. They came here not merely to build a factory, but to help build India's capability. It is our responsibility to welcome them, to thank them for the efforts they put in every day. After all, Bharat ki udaan mein hamari udaan hai. Namaskaram, Jai Hind.
1: Mananiya Kendriya Railway, Mahiti ne Prasaran, તથા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી મંત્રી શ્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું,
2: માન્ય પ્રધાનમંત્રીજીને ગત ફરવરી 28 ફરવરી કો પહેલા પ્લાન્ટ ચાલુ કિયા ઓર 31 માર્ચ કો દૂસરા પ્લાન્ટ ચાલુ કિયા ઓર આજ 4 જુલાઈ કો તીસરા પ્લાન્ટ. આજ જિસ તેજી સે માન્ય પ્રધાનમંત્રીજીને કેબિનેટ મેં 12 પ્લાન્ટ અપ્રૂવ કિયે और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ. आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है और ये ट्रस्ट है, ये भारत की जो आईपी राइट्स को रिस्पेक्ट करने की ट्रस्ट है और भारत ने जो काम करके दिखाया है, ये बनेगा विकसित भारत की बहुत बड़ी फाउंडेशन.
1: આ પ્લાન્ટમાં તૈયાર થનાર ચિપ્સ અને પ્લાન્ટ વિશે વધુ વાત કરતા માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું,
2: માન્ય પ્રધાનમંત્રીજી, ઇસ પ્લાન્ટ મેં બનને વાલી ચિપ્સ કારો મેં, સ્કૂટર્સ મેં, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એપ્લિકેશન્સ મેં, ઇન સબ મેં લગેગી. ઓર જો સબસે બડી બાત હૈ કે ભારત મેં બની ચિપ્સ, ઇસ પ્લાન્ટ મેં બની ચિપ્સ અબ જાપાન, અમેરિકા ઓર યુરોપ ભી જાયેગી. भारत की तकनीक दुनिया भर में अपना नाम कमाएगी और इस प्रयास को सफल करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सब एक बार खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए. ये संभव नहीं था कभी, ये संभव हो पाया क्योंकि एक बड़ा संकल्प हमारे नेतृत्व का है जिन्होंने एक भागीरथी संकल्प लिया कि भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लाएंगे और आज ये सच्चाई में परिवर्तित हुआ. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन. आपने राष्ट्र के लिए इतनी बड़ी नींव तैयार की है. इन 4 वर्षों से कम समय में आज 12 यूनिट्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 3 यूनिट में कॉमर्शियल प्रोडक्शन, 24 डीप टेक डिजाइन के स्टार्टअप तैयार हुए और 70,000 नौजवानों को डिजाइन में ट्रेनिंग मिली है. 315 यूनिवर्सिटीज में आज डिजाइन के कोर्स चल रहे हैं और आज इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर से देश की नई पहचान बन रही है. इलेक्ट्रॉनिक्स में आज 13 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बन गई है जिसमें 25 लाख लोगों को रोजगार उससे जुड़ा हुआ है. आज के इस इनॉग्रेशन के बाद कुछ ही आने वाले कुछ ही महीनों में 2 और प्लांट सेमीकंडक्टर के इनॉग्रेट होंगे. तो स्टे ट्यून्ड, कंट्री इज मूविंग वेरी वेरी फास्ट. यानी 2026 समाप्त होते होते भारत में 5 सेमीकंडक्टर प्लांट्स में प्रोडक्शन आरंभ हो जाएगा और धोलेरा में जो भारत की पहली फैब बन रही है उसका भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है. मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को. आप लगातार फॉलोअप करते हैं, लगातार जो भी स्टेप, जो भी दिक्कत आती है आप इसको सॉल्व करते हैं. साथियों, आत्मनिर्भर भारत होने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है और स्वदेशी गौरव में एक महत्वपूर्ण कड़ी है. आप सबका हार्दिक अभिनंदन, सीजी टीम का अभिनंदन, गुजरात टीम का अभिनंदन और टीम भारत का अभिनंदन. बहुत बहुत धन्यवाद.
1: गुजरात राज्य ना माननीय मुख्यमंत्री શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે પોતાના પ્રાસંગિક પ્રવચનમાં જણાવ્યું,
3: આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને प्रधानमंत्री के

0: के रूप में लगातार 12 वर्ष के सुशासन का अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया है और विकसित भारत की दिशा में हम उनके नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से निकलकर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आर्थिक विकास की इस यात्रा में मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्ट पावर और टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में नए आयाम स्थापित हुए हैं और अनेक नए क्षेत्रों के द्वार खुले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में यह डिकेड भारत के लिए डेकेड है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में भी प्रधानमंत्री जी के विजन से भारत का प्रभाव बढ़ा है। आज का यह अवसर भी प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत की प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण है। केवल 5 महीने की अवधि में ही आज सानंद में प्रधानमंत्री जी के कर कर्मलों से यह तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट के कॉमर्शियल प्रोडक्शन का प्रारंभ होने जा रहा है।
1: सीजी सेमी विषय वधु बात करता माननीय मुख्यमंत्री श्री जणाव्यू,
0: सीजी सेमी का यह प्लांट भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाएगा और देश के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा देगा। साथ ही 5,000 से अधिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी सहयोग देगा।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री ना विजन विषय बात करता माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल जणाव्यू,
0: कोरोना महामारी के दौरान जब पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन संकट में थी, तब से मोदी साहब ने भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र का ग्लोबल हब बनाने का दृढ़ संकल्प किया था। जो कहा वह करके दिखाने का यह प्रधानमंत्री जी का कार्य मंत्र है। इसके परिणाम स्वरूप भारत विश्व की सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने भारत को दुनिया में अग्रणी बनाने के लिए दिए हर संकल्प को साकार करने में गुजरात हमेशा सबसे आगे रहा है। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई के विशिष्ट विजन से देश की पहली स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी धौलेरा और सानंद में वर्ल्ड क्लास सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रॉनिक मिशन से इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले, डिजाइन और इनोवेशन के लिए एक गतिशील और सुदृढ़ सिस्टम स्थापित हुआ है। गुजरात को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में फ्यूचर रेडी और अग्रिम हम बनाने के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से हमने 2022 में देश में पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी घोषित की थी। इतना ही नहीं, राज्य में सेमीकंडक्टर फैब, असेंबली टेस्टिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग तथा चिप डिजाइन इकोसिस्टम के विकास को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प किया है। आत्मनिर्भरता इस संकल्प को पूरा करने का मुख्य आधार है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह आत्मनिर्भरता अब ग्लोबल चैलेंजेस का भी सॉल्यूशन बन गया है। आइए हम सभी प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को आत्मसात करके विकसित गुजरात से विकसित भारत के निर्माण में आगे बढ़े।
1: समारंभ में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सीजी पावर्स कमर्शियल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नु रिमोट कंट्रोल थी उद्घाटन कर्यो। त्यारबाद एक दृश्य श्राव्य फिल्म बतावामां आवी।
2: For decades, semiconductor has been the invisible engine of the modern world. As digital technologies continue to transform economies and industries, semiconductors have become a critical enabler of innovation, advanced manufacturing, and economic growth. India had the talent and the ambition. What we needed was the vision and commitment to build at scale.
3: Hardware or software, दोनों की सफलता के लिए जरूरी है कि हम भारत में स्ट्रांग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का निर्माण करें।
2: under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, the India Semiconductor Mission was launched in 2021. Today, that vision is becoming reality as India builds world-class semiconductor manufacturing capabilities, resilient supply chains, and a globally competitive

0: ecosystem.
1: From now on, we will design for Bharat. We will make for Bharat. We will build Bharat.
2: वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी जीप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी. Our journey began late, but nothing can stop us now.
0: जय हिंद.
3: श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में सीजी पावर ना चेयरमैन श्री वलायन सुबैया तथा रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स ना प्रेसिडेंट मालिनी नारायण मूर्ति ए व्यापारिक उत्पादन नो प्रारंभ करावयो हतो. आ प्रसंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ए पोतना विशेष संबोधन में जणाव्यु.
2: देवी और सज्जनों, आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है. 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे. हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है.
3: सीजी सेमी ओसेड फैसिलिटी प्लांट विषय वधु बात करता माननीय प्रधानमंत्री श्री जणाव्यु.
2: साथियों, 2024 में इस प्लांट का शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला था. 2025 के अगस्त महीने में यहां टेस्टिंग चिप्स का काम शुरू हुआ और आज इस प्लांट का उद्घाटन हो गया है. शिलान्यास से प्रोडक्शन तक का ये सफर निश्चित रूप से अनेक साथियों के परिश्रम का परिणाम है, सुबैया जी जैसे लोगों के नेतृत्व का परिणाम है. अभी मंच पर आने से पहले मुझे इस प्रोजेक्ट से जुड़े अनेक साथियों से बातचीत करने का भी मौका मिला. एक प्रकार से लगता है कि इस परिसर में एक मिनी इंडिया बसता है.
3: पोताना अंतरना आनंद विषय बात करता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जणाव्यु.
2: साथियों, मुझे जरा इस बात का थोड़ा आनंद ज्यादा है. आज जब मैं इसे देखता हूं तो मेरा 20-22 साल पुराना जो सपना, और उस समय देश में इन विषयों की चर्चा कोई करता नहीं था, उस समय नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हो रहा है तो सर्वाधिक खुशी मैं अपने भीतर से अनुभव कर रहा हूं.
3: इंडस्ट्री में क्लस्टर अने सानन तथा देश ना विविध राज्यों में क्लस्टर विषय बात करता माननीय प्रधानमंत्री श्री जणाव्यु.
2: हम अगर दुनिया के औद्योगिक इतिहास को देखेंगे तो एक बात स्पष्ट होती है, दुनिया की कोई भी ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावर किसी एक अकेली फैक्ट्री से नहीं बनी. इंडस्ट्रियल पावर की नींव क्लस्टर्स होते हैं. अमेरिका की सिलिकॉन वैली, ताइवान का शिनचू साइंस पार्क, जापान का सिलिकॉन आइलैंड, सुकुबा साइंस सिटी, ये सब क्लस्टर के महत्व को दर्शाते हैं. आज सानंद भी उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा है. कुछ ही महीनों में यहां माइक्रोन, केन्यास और सीजी सेमी ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया. यानी देश में एक सेमी कंडक्टर क्लस्टर जन्म ले रहा है और आज यहां चिप्स की पैकेजिंग हो रही है, कल यहां विशेष कंपनियां आएगी, केमिकल्स का उत्पादन होगा, नई टेस्टिंग लैब बनेगी, मशीनों की सर्विस करने वाले उद्योग आएंगे, डिजाइन सेंटर्स खुलेंगे और फिर यहां से नए स्टार्टअप भी निकलेंगे. यही क्लस्टर की ताकत होती है. एक उद्योग सैकड़ों उद्योगों को जन्म देता है, सैकड़ों उद्योग लाखों रोजगार पैदा करते हैं,

0: और ये लाखों रोजगार पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदल देते हैं। और ये सिर्फ सारण में ही नहीं हो रहा, देश के अनेक राज्यों में भी सेमीकंडक्टर के क्लस्टर बन रहे।
1: भारत में मोबाइल फोन ना उत्पादन तथा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रे भारत नी सिद्धि विषय बात करता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ए जणाव्यू।
0: साथियों, हमने शुरुआत मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग से की। एक समय था जब भारत अपनी जरूरत से भी अधिकांश स्मार्टफोन हम विदेश से ही मंगाते थे, और आज भारत में मोबाइल फोन प्रोडक्शन पहले के मुकाबले 33 गुना ज्यादा हुआ है। आज भारत यानी जो 2014 के पहले मोबाइल फोन बाहर से लाता था, आपने मुझे जब गुजरात से दिल्ली भेजा तो भारत मोबाइल दुनिया में भेज रहा है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है और दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपोर्टर भी है। साथियों, बीते वर्षों में हमने पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत किया है। आज भारत का टोटल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन 2014 के मुकाबले लगभग 7 गुना बढ़ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट लगभग 11 गुना बढ़ चुका है। साथियों, हमारा प्रयास सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट में आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं है, हमारा प्रयास कंपोनेंट्स में भी आत्मनिर्भरता की तरफ है। और इसलिए अब भारत का अगला कदम उठ रहा है, हम केवल मोबाइल नहीं बनाएंगे, हम केवल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बनाएंगे, हम उन चिप्स का निर्माण भी करेंगे जिनसे इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी दुनिया चलती है। और यही हमारी रणनीति है, पहले प्रोडक्ट, फिर कंपोनेंट्स और अब सेमीकंडक्टर, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी वैल्यू चेन भारत में होगी। यह विकसित भारत का रोड मैप है, यही मेक इन इंडिया का अगला चरण है।
1: सेमीकंडक्टर नी सप्लाई चेन ने मजबूत करवाना लक्ष्य विषय माननीय प्रधानमंत्री श्री ए कहू।
0: ये जो प्रोग्रेस दिख रही है, ये जो अचीवमेंट दिख रहे हैं, इससे जुड़ी सप्लाई चेन को मजबूत करना ये भी हमारा लक्ष्य है। आज भारत इसी दिशा में व्यापक प्रसार कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि चिप डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन और पैकेजिंग तक का पूरा इकोसिस्टम भारत में ही विकसित हो। और भारत चिप तो बनाएगा ही, भारत का युवा मेड इन इंडिया चिप पर एआई, रोबोटिक्स और नेक्स्ट जेन टेक क्रांति को भी गति देगा।
1: देश की युवा शक्ति अने अवसर विषय बात करता माननीय प्रधानमंत्री श्री जणाव्यू।
0: मुझे भारत की युवा शक्ति पर, भारत की युवा टैलेंट पर अटूट विश्वास है। साथियों, मैं इस अवसर पर देश की युवा शक्ति से एक बात जरूर कहना चाहता हूं। जब भी दुनिया में कोई नई औद्योगिक क्रांति आती है तो सबसे अधिक अवसर युवाओं के लिए पैदा होते हैं। एक समय आईटी क्रांति आई तो उसमें लाखों भारतीय युवाओं को अपना सामर्थ्य दिखाने का मौका मिला। फिर स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का दौर आया, उससे भी लाखों युवाओं को नए अवसर मिले। ये जो सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन और एआई रिवॉल्यूशन का दौर है, ये भी अनगिनत नए अवसर लेकर के आ रहा है। रिसर्च और डिजाइन से लेकर स्टार्टअप इनोवेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट तक अनेक अवसर है। साथियों, जरूरत नई स्किल की है, नए आइडियाज की है। अब मायने ये रखता है कि आपके

0: आप नया आइडिया है या नहीं, आपके पास कुछ नया सीखने नया करने का जज्बा है या नहीं। मैं आज जिन बेटियों से मिला, झारखंड, बालाघाट मध्य प्रदेश, कोई केरल से, कोई छत्तीसगढ़ से, और जय जोहार से ही हमारी बात शुरू हुई, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में रहा हूं तो मुझे पता है, उन बेटियों ने जिस तेजी से चीजों को सीखा है और जिस तरीके से वो चीजों को वहां कंडक्ट कर रही थी, गर्व होता है मेरे देश की युवा शक्ति पर। साथियों, आने वाले समय में एआई आपके सामने नई स्किल्स, नई एक्सपर्टाइज का पूरा संसार खोल देने वाली है, इसलिए भारत के युवाओं को अभी अवसर गंवाना नहीं है। और मैं नौजवानों आपको कहता हूं, आइडिया आपका, साथ मेरा। साथियों, ये फैसिलिटी, ये प्रोजेक्ट भी इस बात का प्रमाण है कि भारत के युवा कैसे नई संभावनाओं से जुड़ रहे हैं। यहां काम करने वाली बहनें, बेटियां, जैसा मैंने कहा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सारा ट्राइबल बेल्ट से आई हुई बेटियां हैं, साधारण परिवार, साधारण स्कूल, आईटीआई की पढ़ाई। हमारे यहां तो आईटीआई में कोई दाखिल होता है तो मां बाप किसी को बताते नहीं है कि आईटीआई पढ़ता है, शर्म आती है। अब वक्त बदल चुका है, आईटीआई वालों का जमाना है। पढ़ाई भले आईटीआई में हुई हो, इनके सपने असाधारण है।
1: भारत ने विकसित बनावा तथा भारत ना लक्ष्य विषय बात करता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहूं,
0: आज का यह अवसर इस बात का भी प्रमाण है कि भारत को विकसित बनाने के लिए हम कितने अधीर है। इस वर्ष की शुरुआत में मैंने कहा था कि वर्ष 2026 में 4 सेमीकंडक्टर फैसिलिटी शुरू हो जाएगी, और आज मेरे मंत्री ने कह दिया नहीं, 4 नहीं, 5 हो जाएगी। और मुझे खुशी है कि 6 महीने में 3 प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। यानी आज का भारत बड़े लक्ष्य भी रखता है और उन्हें समय पर पूरा भी करता है। भारत यही भरोसा पूरी दुनिया को, हर इन्वेस्टर को भी देता है। हमारी नीतियों में स्थिरता है, हमारे निर्णयों में स्पष्टता है, और हमारे एग्जीक्यूशन में गति है। मैं सीजी सेमी के मैनेजमेंट को, अन्य इन्वेस्टर्स को भी आश्वस्त करता हूं, रिफॉर्म्स का जो रास्ता भारत ने चुना है, जिन रिफॉर्म एक्सप्रेस पर हम चल पड़े हैं, वो और गति पकड़ेगा। आज का भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। इसी कमिटमेंट से ही 140 करोड़ भारतवासी 2047 तक भारत को विकसित बनाकर रहेंगे। और आज 18-20 साल के नौजवान है ना, ये मोदी इसलिए मेहनत करता है कि जब आप 40-45 साल के हो, जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हो, तब आप अपने बच्चों को विकसित भारत में बड़े करते देख सके, इसलिए मैं मेरी जिंदगी खपा रहा हूं आपके बच्चों के भविष्य के लिए। हम विकास के राह पर चल पड़े हैं, हम प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, और इसमें सेमीकंडक्टर का एक क्षेत्र एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर के नया विश्वास पैदा कर रहा है। मैं आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप भी ऊंचे लक्ष्य लेकर के चले, निशान चूक होगा तो देखा जाएगा, लेकिन हम चल पड़े। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमने जब सांभळी रहा था माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात ना साणंद खाते नी मुलाकात ने आवरी लेतो रेडियो रिपोर्ट प्रसारण आकाशवाणी ना अमदावाद वडोदरा केंद्र पर थी करवामां आव्यो।
2: આકાશવાણીનું આ અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર છે।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज रात प्रस्तुत है ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित अर्णोब चट्टोपाध्याय। किराना घराना के दिग्गज कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद वाहिद खां का हाथ थामकर जिस सांगीतिक विरासत की शुरुआत हुई थी, उसने युगों का सफर तय किया और आज इसे आगे बढ़ाने वाले गुणी कलाकारों में पंडित अर्णोब चट्टोपाध्याय का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल में पले बढ़े पंडित अर्णोब चट्टोपाध्याय ने अपने पिता संगीताचार्य श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय से महज 5 वर्ष की आयु में संगीत सीखना आरंभ किया। आगे चलकर आपने पंडित ए कानन, विदुषी मालविका कानन और उस्ताद मशकूर अली खां जैसे प्रख्यात कलाकारों से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंडित अर्णोब चट्टोपाध्याय ने बड़ी ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा। केवल 7 वर्ष की आयु में सन 1979 में कोलकाता में आयोजित सुरेश संगीत सम्मेलन में उस्ताद अमजद अली खान के साथ आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सुयोग प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड के कलाकार होने के साथ साथ आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत ICCR के सूचीबद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ भी हैं। आज की पीढ़ी के सुविख्यात ख्याल गायकों की श्रेणी में आपका नाम शामिल है। किराना घराना की पारंपरिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पंडित अर्णोब चट्टोपाध्याय अपनी ख्याल और ठुमरी की प्रस्तुतियों में अद्भुत सुंदर गायकी का मिश्रण करते हैं, जो आपकी पेशकश को रंगदार और लोकप्रिय बनाता है।
1: Tonight in the National Program of Music, we present Khayal Recital by Pandit Arnob Chattopadhyay, the musical heritage initiated by Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Abdul Wahid Khan, the doyens of Kirana Gharana, has meandered through the ages and is still survived by a few vocalists such as Pandit Arnob Chattopadhyay. Born and groomed in a musical ambience in the suburban town of Boshirhat near Kolkata, Pandit Arnob Chattopadhyay was initiated into the world of music at a tender age of 5 years by his father, Sangeetacharya Sri Arun Kumar Chattopadhyay. Later, he was trained in classical music by such stalwarts as Pandit A. Kanan, Vidushi Malavika Kanan and Ustad Mashkur Ali Khan. Pandit Arnob Chattopadhyay

0: Sarkar, on the harmonium by Kamalaksha Mukhopadhyay, and on the Tanpura by Koel Saha.
1: ख्याल गायन के इस कार्यक्रम की शुरुआत पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय राग यमन के साथ करेंगे। यह बंदिश पूर्वार्ध में विलंबित एक ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
0: पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय बिगिन्स हिज ख्याल रिसाइटल विद राग यमन। द कंपोजिशन इज सेट टू विलंबित एक ताल फॉलोड बाय द्रुत तीन ताल।

0: ख्याल गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग यमन इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही नाउ प्रेजेंट्स राग हमीर, the composition of which is set to Madhyalaya Teen Tal, followed by Drut Ek Tal.

0: आप पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। ख्याल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्य लय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज ख्याल रिसाइटल विद राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: ख्याल गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाहा। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय इमोन सरकार, ऑन द हारमोनियम बाय कमलाक्ष मुखोपाध्याय एंड ऑन द तानपुरा बाय कोयल साहा। एंड विद दिस

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि

समर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का

हेलो हेलो हेडक्वार्टर, हेलो हेडक्वार्टर, कैप्टन नीलेश रिपोर्टिंग फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम सेक्टर। आज -35 डिग्री, शून्य से नीचे पारा है सर।

0: सर हम 10 घंटे से डटकर मुकाबला करते हैं सर, 3 जवानों का कुछ पता नहीं है। सर्च ऑपरेशन 14 घंटे से रुका हुआ है। जी सर। यस सर, 2 जवान शहीद हुए हैं। अभी तक कॉफिन आया नहीं है सर, शाम तक आ सकता है। सर गोला बारूद की वेट कर रहे हैं, अभी तक पहुंचा नहीं। हेलीकॉप्टर से शाम तक आ जाए तो। जी जी, कन्फर्म करके बताता हूँ सर। ओवर सर।
1: कोई है नायक गिरी?
2: यस सर, रिपोर्टिंग।
0: लास्ट नायक, कितना स्टॉक है?
2: कल शाम तक चल सकता है। सप्लाई 1 हफ्ते से नहीं आई, बूट की सप्लाई भी नहीं आई। पोजीशन क्रिटिकल, फटे जूते से जवान खराब वेदर में फ्रंट पोजीशन पर दौड़ते हैं सर। तीसरा रिमाइंडर परसों भेजा है। ओवर।
0: कल रात वायरलेस पर कौन बैठा था? सुनो, 65 फील्ड रेजिमेंट के 7 जवान एवलांच बर्फ के तूफान के चलते लापता है, उनकी कोई खबर?
2: नो सर, सर्च ऑपरेशन चालू है, 2-3 दिन और लग सकता है जी, बहुत बर्फबारी हुई है। अरे हाँ, हेडक्वार्टर को रिमाइंडर भेजना है सर, राशन की डिलीवरी जल्द से जल्द हो जाए तो।
0: हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और तुम जाओ चौकी नंबर 11 को संभालो और हवालदार को यहां बुलाओ।
2: यस सर।
3: रिपोर्टिंग सर, 8 घंटे बीत चुके हैं, सरहद के पास गोलीबारी बंद है, बर्फ के तूफान से काफी नुकसान हो रहा है, रम की डिलीवरी को रिमाइंड भी करवाना है सर।
0: अरे शिंदे, पीने वाले क्या निशाना लगाएंगे, छोड़िए सब। अरे हाँ हाँ हाँ, तेरी तो छुट्टी मंजूर हुई है ना, कब जा रहा है?
3: कल शाम को 4 बजे, कैंप से सुबह 7 बजे पैदल निकलूंगा तो समय से पहुंच जाऊंगा। और सर, आपकी सब पार्टी में वेट कर रहे हैं, प्लीज।
0: अरे मैं तो शराब पीता ही नहीं, तो मालूम तो है मैं गुजरात से हूं। सुनो, एक बार मैं जर्मनी ट्रेनिंग में गया था, शाम को स्टेज पर से सबकी पहचान देने के वक्त किसी ने मेरी पहचान देते हुए कहा कि देखो जी, ये महाशय उस देश में से आते हैं जहां क्या खाना और क्या पीना वे खुद तय नहीं करते हैं, उनकी सरकार तय करती है, और वो भी कानून बनाकर। मेरी तो हालत खराब हो गई, सबको ताजुब हुआ कि ये कैसी सरकार है जो नागरिक को खाने पीने की स्वतंत्रता नहीं देकर सब वो तय करती है।
3: क्या बात करते हो साहब, साहब यहां तो जरूरत से पीते हैं हम, और आज का टेम्परेचर आपने सुना, -32 है। सर्दी से निमोनिया होने में देर नहीं लगती, और ये सब लग्जरी चीजें आप अपने गुजरात में ही छोड़ दीजिए, यहां तो जरूरत से पीना पड़ता है।
0: अच्छा अच्छा, तुम शुरू करो, मैं एक वायरलेस मैसेज भेजने के बाद शामिल हो जाता हूं। अरे हाँ सुनो सुनो, आज मैं भी तुम्हारी खुशी में शामिल रहूंगा, लेकिन हाँ मेरे लिए वो छोटा सा बनाना, वो तुम्हारे जैसा पतियाला नहीं। देखो देखो, हमें आदत नहीं है, ये इतनी ठंड है, आप लोग ये बोल रहे हो तो पहली बार, सच कहूं तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता।
2: सर क्या बात है, तब तो खुशी की बाढ़ आएगी। अरे सुनो, कैप्टन साहब आज पार्टी में शामिल होंगे।

0: सही पकड़े हैं।
1: हम उनसे क्या कहेंगे पता है?
0: क्या कहेंगे?
2: हम उनसे कहेंगे जाने जा, हम उनसे कहेंगे जाने जा, हम उनसे कहेंगे जाने जा।
1: अरे क्या कहेंगे,
0: क्या कहेंगे? अरे लाए हैं बड़ी मुश्किल से संभाल के लाए हैं,
1: सुंदरियों को छोड़कर हम पहुँचे हैं, पहुँचे हैं।
0: अरे लेके आए हैं, लेके आए हैं, बचा के लेके आए हैं।
1: आए तौबा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या लाए हो?
0: तो सुनो सुनो मेरी जाने जा, अरे सुनो सुनो मेरी जाने जा,
2: पूछती हो क्या लाए हो, पूछती हो क्या लाए हो।
0: तो सुनो, हम दिल अपना बचा के,
2: दिल अपना बचा के।

0: दिनों की छुट्टी है और अरे भाई सुनो सुनो सुनो।
1: हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए सुनाइए, फरमाइए।
0: मेरा किस्सा सुनो।
1: हाँ
0: तब हम बारामुल्ला की पठान चौकी पे थे। सरहद पर तनाव था, लश्कर की मूवमेंट काफी थी, कभी भी युद्ध का बिगुल बज सकता था। हम सभी बेचैनी से लड़ने को तैयार थे,
1: बराबर तैयार थे। लेकिन तब तब एक शामत आई, वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। छुट्टी पे गए हुए सबको वापस फौज के मोर्चे पर हाजिर होने का कमांडर साहब ने फरमान जारी किया। मैंने मिला हुआ तार पढ़ा और क्या लिखा था पता है? लिखा था कि बहन की शादी 6 अक्टूबर को तय हुई है, जल्दी घर पे आ जाओ, कोई बहाना नहीं चलेगा, तेरी मां ने कसम भेजी है, जल्दी घर आ जाओ। बोलो, मेरी तो मति मार गई। साहब के पास जाके मैंने हाथ जोड़ा, साहब साहब मेरी बहन की शादी तय हुई है, 6 अक्टूबर को शादी है, ना मत कहना प्लीज, ना मत कहना, मैं हाथ जोड़ता हूं।
0: साहब लोग बड़े चतुर होते, कभी ना नहीं कहते, लेकिन ना का बाप बोलते हैं। वो हंसते हंसते बोले, अरे सुनो, एक काम करो, मैं जो काम बताऊं वो करके आ जाओ तो तुम्हारी छुट्टी पक्की। बोलो, करोगे?
1: हां सर करूंगा, आप जल्दी बताइए, मैं जरूर काम करूंगा।
0: तुम्हें मालूम है सरहद पर तनाव है, सबकी छुट्टियां रद्द कर दी है और सबको ड्यूटी पर वापस बुलाया है। ये सब के बावजूद मैं जोखिम उठाता हूं, एक काम करके तुम आओ तो तुम्हारी छुट्टी मंजूर।
1: हाँ सर, आप जल्दी काम बताइए, मैं करूंगा।
0: शाम होने से पहले दुश्मन की सरहद में घुस के उनकी एक पैटन टैंक लेकर आओ, बस इतना करो।
1: और सुनो यारो, शाम होते होते दुश्मन की एक टैंक मैंने अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर के सामने लाके खड़ी कर दी। अरे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई साहब की तो, और साहब चकरा गए, बड़ी मुश्किल से बोल पाए। बोलो
0: बहादुर, ये कारनामा किया कैसे, जल्दी बताओ।
1: मैंने कहा साहब

0: इसी तरह हम अपनी भारतीय टैंक दुश्मन के जवानों को भी दे देते हैं, और ये पुराना रिश्ता है। और साहब, आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन शाम को सरहद पर महफिल और मुशायरा भी होता है। अरे, कभी कभी तो हम मिठाइयां भी बांट के खाते हैं। सरहद पर सभी त्योहार भी साथ में मनाते हैं, लेकिन जब युद्ध होता है,
1: युद्ध के दौरान सब बंद हो जाता है और हम दुश्मन फिर से दुश्मन हो जाते हैं। दुश्मन का पाठ अदा करते हैं और मरते हैं, सदियों से मरते हैं। दुनिया का यही रिवाज है। कब दोस्त बनना है और कब दुश्मन बनना है, वो हम लोग तय नहीं करते, वो हमारे ऊपर वाले नेता लोग तय करते हैं।

0: सूबेदार मेजर चक्रवर्ती, कोई हताहत जान हानि का पूरा रिपोर्ट दें।
1: सर, एक शहीद और दो क्रिटिकल इंजर्ड हेलीकॉप्टर लेके अभी अभी आर्मी हॉस्पिटल में गए। दो जवानों को माइनर इंजरी, पांव में गोली लगी है लेकिन सीरियस नहीं है।
0: बदलना चाहिए, कुछ तो बदलना चाहिए, यहां भी और वहां भी। चक्रवर्ती, ये बता, हम लोग क्यों लड़ते हैं? हम क्यों नफरत करते हैं उनसे जिसने मेरा या तुम्हारा कोई निजी नुकसान कभी भी नहीं किया है, जिसकी मैंने या तुमने सूरत तक नहीं देखी? फिर भी हम क्यों लड़ते हैं, क्यों मरते हैं?
1: साहब, हम यहां अपनी मर्जी से नहीं लड़ते हैं। लड़ाने वाला तो बड़ी ऑफिस में, राजधानी के एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं। कमांडो, सिक्योरिटी, सुरक्षा कवच है इनके पास। लड़ाते वो है, मालिक तय करता है कुत्ता किसे काटे। वो तो हुक्म देने वालों की चौकी करता है। अरे छोड़ो साहब, अब तो 2 साल बचे हैं रिटायर होने में। यह अजीब सिस्टम है, परंपरा है, कोई नहीं बदल सकता, सदियों से चली आ रही है। दुनिया भर में लश्कर का हाल यही है। समझ तो बहुत रहे हैं साहब, दुनिया भर में सिस्टम है, सोच व्यवस्था कोई नहीं बदल सकता। मेरा दुश्मन मैं तय नहीं करता हूं। राजधानी में सुरक्षित बैठे सर्वसत्ताधीश करते हैं। मैं वो इंसान को दुश्मन बनाता हूं जिसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। वो भी किसी का बेटा, शौहर, पति, इंसान है। एक सायरन बजने से, युद्ध घोषणा से हम एक दूसरों को मारने पर उतारू हो जाते हैं। मैंने बहन की राखी उस हाथ में देखी थी जिसको मैंने एक दिन कॉफिन में रोते रोते तिरंगा लपेटे रखी थी।
0: यहां परंपरा बन चुकी है, शहीदों की परंपरा का नाम दिया है उसे। जो हमें लड़ाते हैं उन नेताओं के बेटों को कभी कॉफिन में किसी ने देखा? आज तक तो नहीं देखा।

0: हेलो, कौन बोले जे?
1: सुनो, हम दिल्ली से आए हैं, कैंप मिलिट्री गैरिसन इंजीनियर की ऑफिस से बोल रहे हैं। सुनो,
0: जी जी जी बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ।
1: हम 5 बजे से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे हैं, पूरा 21 घंटे से। आपका एड्रेस और टेलीफोन नंबर हमें विनोद भाई सोनी से अभी मिला है। नहीं नहीं, वो हमारे पास नहीं है। देखो, आप सोसाइटी के बाहर निकलकर कोई मेन सड़क पर आ जाओ, आपसे मिलना जरूरी है। क्या कहा? पालड़ी अंजलि सिनेमा? हम यहां एलिस ब्रिज वीएस हॉस्पिटल से
0: सीधा रास्ता पकड़ो और इसी सड़क पर अंजलि चौराहे पर मैं खड़ा हूँ। हाँ हाँ, निकलता हूँ जी। हाँ, घर पे सब सो रहे हैं। हाँ जी, अभी किसी को नहीं बताऊंगा।
2: कौन? अरे जगदीश, अड़ती रात रे। अरे पर अत्यारे कौन मळवा आवे? अरे अत्यारे मने उठाडवानी सी जरूर हती, जेने मळवो होय तो ऑफिसे आवे।
0: बापूजी, तेमनी वात तो सांभळो, अमदावाद मां पहली वार आ लोको आव्या छे। क्यारना कलाकोथी आपणुं ज घर शोधता हता। आपणा विनोदभाई सोनी पासेथी टेलिफोन सरनामुं लईने।
2: हा सारू, बोलाओ।
1: नमस्कार बापूजी, आपको एक समाचार देना है।
2: क्या फिर पाकिस्तान ने नापाक हरकत शुरू की?
1: बाबूजी, हम कैप्टन नीलेश को लाए हैं।
2: है? क्या मतलब? नीलेश को लाए हैं? क्या छे क्या छे? अरे कहाँ है नीलेश? सुना नहीं, कहाँ है वो?
0: जी, कॉफिन में लाए हैं।
2: क्या कहा?
1: जी, पूरे मान सम्मान से, तिरंगे में, शहीदोचित आदर से।
2: एक मिनट सांभळो, सुनो, रोना धोना बंद करो। मेरा बेटा मरा नहीं, शहीद हुआ है, देश के लिए प्राण समर्पण किया है। नसीब वाला है, 24 साल का मेरा बेटा कैप्टन नीलेश ने हमारे खानदान का नाम रोशन किया है, हमारे पुरखों की 100 पीढ़ियों का नाम रोशन किया है, हमारे खानदान का इतिहास आज सुवर्णमय हुआ है। भारत माँ का लाल सियाचिन मोर्चे से आया है। सुनो, हम सब घर, मोहल्ला, शहर, प्रदेश और भारत देश आज गौरवान्वित हुआ है। याद रहे, सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मेरा कैप्टन नीलेश कुमार आज से देश का हुआ है, शहीद हुआ है, उसको विरोचित विदाई दे। राष्ट्र की एकता, अखंडता और हमारी रक्षा के लिए शहीद हुआ है, मुझे अभिमान है। ऐसे बेटे घर घर में हो, आज शहीदोत्सव मनाएं। आज भारत माता का बेटा शहीद हुआ है।

0: सुभाष मेहता, यस तुन्ना शोभा मोदी,
1: ओ कौन मुनीश्वर,
0: हसमुख भावसार,
2: यामिनी
0: गोपी देसाई,
3: उपेक्षिता स्त्री नो दुख समझो छो अंशुमान,
0: हर्षक ठक्कर।
4: नाटक मेरी रोज ना लेखक विभूत शाह, निर्माण सहाय गोपाल मुदलियार, रजुवात रमेश भट्ट।

अकबर ने डेरा जमाया, जहांगीर ने हुकम यथा चलाया, ए महावीर ठाडे रया माफ मांगी, पण तथापि रया ना यथा देह त्यागी। आ पृथुराज दिल्ली पति मर्द पू

आयो एम छंदो त्रटकनी चाल हरखना प्रसंगमां गवाती होई तो जुदी होई, विरहना प्रसंगमां गवाय तो जुदी, छंद एक ज त्रटकनी चालमां विरहना प्रसंगमां कविश्री कागल लखे

कार रजनीज भागती ए पोपुआ का मसदू प्रगति जोत जगमग जागती पोफाट गामा सदू प्रगति जोत जगमग।

चारण ओलो कली घन सेन मत नौबत गड़गड़ी ए निशंक गासुर थाप थड़ी क्या बाल घन सेना घड़ी अणुवखत गर्ज

और पर विपति हाथ अन डर पर दारा दाम पण धर ईश्वर नित ध्यान तू। अरे नया तो कर ने किसे काम दव कर नहीं कहीं कर जाई डर पर धर जाई बाक नजर जाई धर प्रीति जप नाम जिगर जाई बाल उमर जाई जस ले जर से मन जीती। ये गंभीर सागर से रहे सबर से मिले उधर से परवाना ऐ चित चेत से आना फिर नहीं आना या गिर जुग में मर जाना जय या गिर जुग में मर जाना। दो मद ना कर मन में मिथ्या धन में जोर बदन में जोबन में ए मद ना कर मन में मिथ्या धन में जोर बदन में जोबन में सुख है न सुपन में जीवन जन में अन चपला धन में छिन छिन में ए तज वेर वतन में द्वैष धरन में नाहिक उन में तरसाना। ऐ चित चेत सियाना फिर नहीं आना या गिर जुग में मर जाना। कोई अंति कारी भुजबल भारी कोई अनारी अहंकारी को तपधारी फल आहारी को विहारी व्रतधारी ए तृष्णा नहीं टारी ए तो रया भिखारी अंत खुआरी उठ जाना। तो चित चेत सियाना फिर नहीं आना या गिर जुग में मर जाना। जूठा है भाई आप बुढ़ाई जूठी माई मा जाई जूठा पितराई जूठ जमाई अन जूठ लुगाई ललचाई ए सब जूठ सगाई अंत जुदाई देह जलाई समसाना। तो चित चेत सियाना फिर नहीं आना या गिर जुग में मर जाना। तज पाप पलीति अस्त अनीति भ्राति भ्रीति अस्तीति सजनाय सुनीति उत्तम रीति अने प्रभु पर प्रीति धर प्रीति इंद्री ले जीती गुण माहिती दृढ़ ज्ञाना। ऐ चित चेत सियाना फिर नहीं आना या गिर जुग में मर जाना। दुनिया दो रंगी तुरक तुरंगी अने स्वार्थ संगी एक अंगी हो जा सत्संगी दूर कृसंगी ग्रह न टंगी जम जंगी तो पिंगल पचरंगी रचे उमंगी अने छंद त्रिभंगी सरसाना। ए चित चेत सियाना फिर नहीं आना या गिर जुग में आय मर जाना जय आखिर जुग में मर जाना। तो नाम तेनो नाश छे नथी कोई अमरा जगत मां यकीन वात साची छे नगद मां अने रया नो राणा राजी आई आ तो सुर नर मुनि संकेत पण हजी हजी बाजी तारे हाथ छे एन माते चेत चेतनर चेत कारण के आतन धन ते तारा नथी अने नथी प्रिया परणेत पण या तो पाछोड़ पाछड़ सौरे से पड़ा एन माते चेत चेतनर चेत। तो आवो मनुष्य जेवो देह मळ्यो छे तो कंक सारा काम करते जा कारण के वारंवार आवो समय मळशे के नहीं तेनी खबर नथी। बाकी तो नाम समोवड़े कोई नहीं भाग्य बड़ो तो राम भज वखत बड़ो कछु दे अकाल बड़ी उपकार कर अने देह धर्या फल ए तो भाग्य बड़ो तो प्रभु नु भजन कर तो मनुष्य जो देह मळ्यो होय भाग्य सारा होय तो प्रभु नु भजन करते जा अने तारो वखत मतलब समय सारो होय तो तारू नाम रे एवं काम करतो जा कारण के नाम रहंता ठकरा नाना नहीं रहंत। तो नाम अमर छे देह नहीं अने जो तू अक्कलवान सारी बुद्धिवाड़ो होय तो कोई नो कार्य बगड़तू होय तो बे सारा वचन बोली कोई नो हित थतू होय तो करतो जा अने आ बधु तो ईश्वर कृपा होय तो ज मळे छे कारण કે પ્રિય બોલવું સજનતા અને દાતારી સુરપંથ પ્રિય બોલવું સજનતા દાતારી સુરપંથ એ તો અભ્યાસે ના મળે બિના કૃપા ભગવંત સારું બોલવું સજનતા દાખવી ઉદાર થવું અને સુરવીરાય આની કોઈ પાઠશાળા નથી ઈશ્વર કૃપા હોય તો જ મળે છે તો પ્રભુ કૃપા એ જ સાચું છે।